la tripulada de tanu, edita sacan la sal sal. Kaushik suno banda ehman, kutila kala basali jakula gala, tuma hata kahu jo chaha ubara, kahita taap bal rosho hamara. Sura samad karani karahi, kahina janab hi aap, nityaman ran paayani, kayan karahi pralaap. परशु सहित बर नाम तुम्हार कहु सुभाहु न कुल ही प्रसंसी कालहु डरहि न रण रघुवंशी विप्र वंश के असि प्रभुताई अभय होई जो तुमहि डराय सुनि विदु गुण बचन रघुपति के उखरे पटल परसु